0: तुम आशिक क्या है ना
1: है जब साथ में है दिल पर आ जा मेरी बाहों में सो जा रख के सर
2: जंगल है आधी रात
3: रानी देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़।